0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेबर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेबर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच

0: पक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चला।

0: आया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का पांचवा विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही, इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमरीका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक

0: ने लिखा है इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart de Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students including to suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance with water sector data brought together systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart de Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral

0: होगी। घर मेरा तू बसा, मैं ही क्या हूँ बुरा, रुक जा रुक जा।
1: अरे रुक जा,
0: जरा रुक जा।

0: जाएगा मुझसे अच्छा भला मिल जाए तो जा चली जा चली जा
1: अक्सर ये तो चली
0: जरा रुक जा।

तजंत तक तजंत तरगड़ तक थी तक अधिक तधीन गिण तजंत तक तजंत तरगड़ तक थी तक अधिक तधीन गिण तजंत तरगड़ तक थी तक अधिक तधीन गिण तजंत तरगड़ तक थी तकाधिक तधीन गिण तजंत धनान तथा रूम तथा दीन तरगड़ तुम गिण तुम तक अधिक

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कार्यक्रम यादों की महफिल में आज हमने सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी? अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी-कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जी

जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने, तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप? अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लेबराडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था, और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूं। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं। तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था, और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतजार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

0: areas. Mehrish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Prime Minister Narendra Modi today took stock of the situation of flood in his constituency Varanasi. He spoke with District Magistrate Satendra Kumar via telephone to obtain detailed information. He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farukhabad district. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9, Victor Lai of Canada, in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence data centres and global capability centres. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉंकन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
3: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप

0: कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: The world is witnessing a time of crisis.
3: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
4: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख

0: राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग

0: को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
4: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री

वेबर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಳ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2027 ಫೆಬ್ರವರಿ 8-12 ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 16 ಆವೃತ್ತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 6:40.
1: हम आकाशवाणी बेंगलुरु से बोल रहे हैं. उर्दू प्रोग्राम कहकशां.
2: कहकशां प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामीन को हमारा खुलूस भरा आदाब.
3: मेरा नाम प्रोफेसर मेमनून सईद है. मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू का वजीफाया प्रोफेसर हूँ और हम गुफ्तगु कर रहे हैं कौमी यकजहती और असर हाजिर के बारे में. मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा भी मौजूद हैं और हम इस मौजू पर गुफ्तगु करेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे. कौमी यकजहती का तस्वुर जो है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ हिंदुस्तान से वाबस्ता है. दूसरे भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ कौमी यकजहती पर गुफ्तगू हो रही हो, तबादले ख्याल हो रहा हो और उस पर किताबें लिखी जा रही हो. एक ऐसा तस्वीर है जिसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान से है. इसकी वजह भी यह है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ की कौमियत वाजह और मुतय्यन है. जैसे स्पेन को लीजिए तो वहाँ के लोग स्पेनी हैं, जर्मनी को लीजिए तो वहाँ के लोग जर्मन हैं, या इसी तरह फ्रांस को लीजिए तो वहाँ के लोग फ्रांसीसी हैं. लेकिन हिंदुस्तान के बारे में एक अलग तस्वीर कायम होता है, क्योंकि जिन ममालिक में वहाँ की कौमियत वाजह है, वहाँ की जबान, वहाँ की तहजीब और वहाँ के अकायद, ये सब इस कदर मुश्तरक हैं कि उनको उसके खिलाफ या उसके अलावा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता. लेकिन हमारा वतन ऐसा वतन है कि जिसमें बहुत सी कौमियतें हैं और इन कौमियतों के कि ये एक वाहिद कौम हिंदुस्तानी है. ये सूरत हाल सिर्फ हिंदुस्तान में है. इसकी वजह भी है कि ये वतन जो आगाज में इसका तायुन हुआ था तो इसकी अपनी जो आबादी थी या इसके अपने जो बाशिंदे थे वो ड्रेविडियन थे और बहुत बड़ा मुल्क था और उनकी आबादी कम थी. अब से कोई 3,500 या 4,000 पहले वतन में आर्या आए और कई किस्तों में आए. करीब करीब 1,000 तक ये सिलसिला जारी रहा.
4: जी सही साहब, आपने एक बात याद दिला दी मुझे. मैंने कहा आपसे जिक्र करूं इसका कि आग का दरिया याद आ गया.
3: जी बिल्कुल
4: जी बिल्कुल. तो मैंने कहा कि आप कहेंगे इसके बारे में कुछ.
3: जी जी बहुत जी, सही कहा आपने जी. क्योंकि आग का दरिया में भी इसी तसलसल को पेश किया गया है. चूंकि आर्या आने और यहाँ बसने में कोई 1,000-1,500 का अरसा लगा तो उनकी तादाद भी यहाँ बराबर बढ़ती रही
4: जी.
3: और पूरा मुल्क जो है उनसे बस गया. अब से कोई 1,000 पहले बैरूनी कौमें भी आने लगी. जैसे जानते हैं कि गजनवी आए, फिर तुगलक आए, बलबन आए, उरी आए, ये सब लोग भी आने लगे
4: और सबने अपनी अपनी तरफ का काम किया, अपनी तहजीब को बढ़ावा दिया और हम सब एक तहजीब में बन गए.
3: एक तहजीब में बनते गए
4: जी.
3: तो इन लोगों के आने की वजह से ये हुआ कि एक कसीर आबादी तो आर्या की थी
4: जी.
3: लेकिन उससे कम आबादी जो है ये आने वालों की हुई.
4: हाँ.
3: तो हम इसे इम्बेलेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि एक तारीख का फैसला था.
4: सही.
3: अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कौमें जो आई तो आकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई.
4: ये बहुत अच्छी बात कही आपने.
3: दुनिया भर में जो है ममालिक एक दूसरे से लड़ा करते थे लेकिन लड़ने के बाद उनके अपने वतन, उनकी अपनी सरहदों का तायुन जो है हमेशा कायम रहा
4: जी.
3: लेकिन बस गई. जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जो फतेह होता था वो फतेह करके अपने मुल्क को लौट जाता था. तो इस तरह हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमों की एक वाहिद कौमियत का तायुन जो हुआ तो ये एक गैर मामूली

0: वहदत का गीत गाया।
1: क्या खूब है।
0: तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। फिर आगे कहते हैं, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था,
1: बहुत खूब,
0: मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।
1: यहाँ कहाँ रहे तातारी, कहाँ रहे तुर्क,
0: कहाँ रहे,
1: और सारे के सारे हिंदुस्तानी हो गए,
0: सारे के सारे हिंदुस्तानी हो गए।
1: सही।
0: और ये अपनी,
1: इससे बड़ी कौमी एकजहती की मिसाल हमको क्या मिल सकती है,
0: इससे बड़ी क्या मिसाल मिल सकती है कि इतनी सारी कौमें हैं और उनकी अब एक इनफरादियत है, लेकिन यहाँ आकर वो इनफरादियत हमारे वतन में जम हो जाती है, जम एक वाहिद कौमियत बन जाती है। ये बड़ा खूबसूरत शेर है
1: जी।
0: ये कलाम है अल्लामा इकबाल का। और इसी तरह आगे चलकर भी उन्होंने, जैसे कि मैं उर्दू की बात कर रहा था, तो उर्दू में उर्दू का जो सेक्युलर किरदार है वो हमारी शायरी में सबसे ज्यादा उभर कर आया है। मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारी उर्दू शायरी में कभी किसी मजहब के खिलाफ या किसी अकीदे के खिलाफ या किसी दूसरे मजहब की शख्सियत के खिलाफ कोई मवाद मिलता हो।
1: सही।
0: जरा भी एक मवाद भी नहीं। जब भी हमने दूसरे मजाहिब का जिक्र किया है, दूसरों के अकायद का तस्किरा किया है, तो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ और बड़े एहतराम के साथ किया है। अल्लामा इकबाल ही की एक नज्म है रामचंद्र जी के बारे में
1: जी। हाँ देखिए, यहाँ पता चलता है कि
0: जी बड़ी मशहूर नज्म है। अब वो क्या कहते हैं श्री राम के बारे में, क्या कहते हैं वो भी देखिएगा। ये नज्म शुरू होती है इस कलाम से कि लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खत मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस पूरी नज्म में एक शेर जो है सबसे मतलब एक इंतहा दर्जे का मुतासर करने वाला और अल्लामा इकबाल जैसे शायर की जबान से निकला है वो ये है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज।
1: सही।
0: है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इतना ऊंचा मर्तबा उसको दिया है कि अहले नजर ने रामचंद्र जी को इमाम हिंद करार दिया है। देखिये यह किरदार हमें उर्दू शायरी में ही नजर आता है।
1: सही।
0: मैं दूसरी जबानों से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि चूंकि ये लिंगुआ फ्रांका थी पूरे हिंदुस्तान की, तो इसमें जो बातें कही गई हैं वो बड़े दिल से कही गई, बड़े खुलूस से और बहुत एहतराम के साथ कही गई हैं। ये इस तरह की शायरी जो है, इस तरह का कलाम है ना, ये हमारी कौमी यकजहती की सबसे बड़ी मिसाल
1: है। इसका हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है, जब महाभारत और रामायण रिलीज हुआ, जब एपिसोड्स चले, तो इसमें हर एक ने उसको बहुत शौक से देखा। इसलिए कि हमारे जहनों में ये बात थी, हमने पढ़ा था, हमने लिखा था, हमने इसको गैर नहीं समझा, हमने ये सोचा कि ये भी एक हिस्सा है, ये भी अदब का और तहजीब का एक हिस्सा है। जो भी बातें आ रही है उसमें इंसानियत का ही जिक्र है,
0: इंसानियत
1: इसमें कोई ऐसी चीज, कुर्बानी तो वहाँ भी आती है, कुर्बानी हर मजहब में आती है, तो ये चीजें हमको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे
0: स्कूल में बहुत सही कहते
1: हम सुनते रहे, हमारे कान आशना थे, हमारे जहन खुले हुए थे, तो इस खुले जहन को अब बाकी रखना बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: अगर हम देखा जाए तो हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं अगर इससे हम दूर हो रहे हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: क्या कहते हैं आप इस बारे में?
0: नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये कोई बाहर से लादा हुआ मिजाज नहीं है।
1: सही।
0: ये हमारे सिरिश्त में दाखिल है कि इस वतन की हर चीज से हम मोहब्बत करें, उसके अकायद से मोहब्बत करें, उसके कल्चर, उसकी तहजीब से मोहब्बत करें, हालांकि हमारे अकायद कुछ अलग हैं, लेकिन ये जो है हमारी वतन की सिरिश्त में दाखिल है और वो हमारी सिरिश्त में भी आ गया है कि हमने कभी ये फर्क नहीं महसूस किया कि भाई वो अलग अकायद हैं, अलग हैं, वो हैं, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा। लेकिन शायस्ता साहिबा, आप भी महसूस करती होंगी कि इन दिनों ये सूरत हाल कुछ बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है।
1: बल्कि ये कहना चाहिए कि इसको बिगाड़ा गया है,
0: बिगाड़ा गया
1: जाती मफाद के लिए,
0: जाती मफाद के लिए बिगाड़ा जा रहा है। वरना देखिएगा, जिन ये खास तबके को जो यकीन है कि ये असल जो है, इस वतन की असल जो है, वे खास तबके से ताल्लुक रखते हैं और इसका मतलब है कि दूसरों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो शुरू से देखिएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा वतन जिसमें सबके सब माइग्रेंट्स ही रहे हैं। बाहर से आने वाले, पहले आर्य आए, फिर सलातीन आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो ये वतन जो है कभी किसी एक की मिल्कियत या एक का वतन कभी नहीं रहा। इसकी सिरिश्त ही में दाखिल है कि तमाम अकवाम की आवाजगाह बने। तो ये दावा करना कि ये सिर्फ किसी एक नुक्ते नजर की मिल्कियत है, ये सही नहीं है। लेकिन ये है कि आपने भी महसूस किया होगा कि इस तरह की अलहदगी की बातें

0: है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर हैं तो वो आपका चेहरा बता देता,
1: बिल्कुल बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
2: काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
3: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
2: और फिर ट्रेन आती है।
3: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
2: फिर क्या हुआ बिमलेश जी?
3: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
2: बिमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
3: सही कहा जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
2: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
3: जी,
2: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली
3: जी। और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराता की स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
2: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
3: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
2: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
3: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
2: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
3: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
3: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
2: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
2: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
3: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
2: माला की चांदी की पायल।
4: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
5: अरे माला तू।
4: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
6: बहन जी, डाकिया।
4: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
7: माला, यह तुम्हारे लिए है।
4: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से

0: बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने ना आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से

0: आ गया हूँ, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
1: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है, क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
0: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
1: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
0: ना जाने क्या होगा इसका।
1: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
0: अरे वो सब तो ठीक है, पर
1: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
2: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की, और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
3: ऐसे ऐसे
4: झूठ मारना।
5: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
6: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
4: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
6: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
5: कैसा प्रयोग?
6: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
4: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
6: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
4: अच्छा
6: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
1: अच्छा।
6: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
5: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
6: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
5: हाँ हाँ
6: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
5: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
4: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
5: वाह मार्कोनी, क्या क्या बात है!
4: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह क्या बात है! अरे वाह,
6: सिग्नल मिला?
4: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
2: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
7: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
2: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब जाएंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल ही मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो।
3: देखता हूं।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी।
3: अरे ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,

0: अरे ये क्यों हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
1: अरे अरे भागो भागो बाहर निकलो, भागो डेक की ओर भागो।
2: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
1: शांत हो जाइए।
3: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
0: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरल्ड।
4: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, एमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइट सीधा भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
3: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
3: जल्दी करो,

0: and 25 degrees south. I repeat, 40 degrees north and 25 degrees south. Or held, lights in a video. Send general call distress.
1: Jaldi, jaldi karo.
0: जीवन रक्षक नाव के नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट के नीचे उतारो।
2: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है? टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: ट्रेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये
6: आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
7: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
7: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
7: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीता कौनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे

0: आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रेड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: तो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह, क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतान, ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक खुराक ना मिल जाती तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीजें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा होते थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे।

0: सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी। तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं, हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएं, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
0: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम NDA कहते हैं उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे, वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे। और मुझे याद हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए। सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, मिला बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी तो सन 1986 में आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया CDS एग्ज़ाम
0: जी हाँ।
1: और फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी। तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी और हम जैसे ही यूनिट पहुंचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहां पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहां भेज दिया गया और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहां पर रहे और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ। अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं आपकी जिम्मेदारियाँ आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं। और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं, वो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हम

हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को सिपाहियों को ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हालात कैसे भी क्यों ना हो तुम्हें डटे रहना है टिके रहना है और हर जंग में फतेह

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस

0: विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेस ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में या इन्वेंट्री में, आर्टलरी में या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे, तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थी और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2-3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वाज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला एंड खुशी का माहौल था जब आपने कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनका उपयोग लड़ाई के दौरान।
0: जी, पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ,
0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार,
1: फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप करना होता है। सबको मौका ज़रूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, तो आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदानी जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने है कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के ज़रिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें मायने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। जैसे सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं

0: या कोई चीज बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों काफी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हो और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम यू नो वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
1: वो सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं

0: गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
1: जी, तो पूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा,
0: ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही करने हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता है अगर उसे जीत हासिल करनी, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वही जिंदगी को ले आता है।
0: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
1: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासकर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण।
0: तो दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं।

0: जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं एक सुखद सांस उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
1: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थी और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए, काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान। नाम है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है, ये रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार, अति विशिष्ट आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।
2: सरहद पे चले, सरहद पे हमें

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेवा में रहते हुए अलग अलग पोजिशन पर आगे बढ़ते गए और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्त है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो खासकर जो फौज का महकमा है वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं, भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, जब से फौज में आते हैं और जाते हैं हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज़ हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें

0: भर याद करता है और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियाँ थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी ज़ोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, ज़िंदगी भर उन चीज़ों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीज़ें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है वो उसके साथ में आप ज़िंदगी कुछ ऐसे असूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो ज़िंदगी भर आपके शायद काम आती है, भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसा ही कुछ सिख पाएं।
1: जी फौज की खास बात मुझे ये लगी कि जब भी हम इस प्रोग्राम में संदिग्ध सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा, वो हो भी गया, शायद एक बड़ी खूबसूरत बात है,
0: खूबसूरत चीज है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनीवन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं हम अपना कार्य शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहां हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एक ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता अपना प्रेम सेनाओं को सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं, अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सब आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा। ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए। तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिज़र्व करता है,

0: कई बार ये अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है. इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक यू नो एक उसको शाबाशी दी जाए. ज़रूरी नहीं है कि वो मिले लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है. और मोदन आपके अपने लिए वो एक एहसास आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है आपके पिताजी आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है. सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग an honor is never a resting point. It is a reaffirmation of the trust that people have in you. चाहे वो आपके जवान हों चाहे आपके बच्चे हों आपके माता पिता हों आपके रिश्तेदार हों सबको एक उम्मीद रहती है. और it serves as a reminder of the dedicated soldiers and the teams whose collective effort made that contribution possible. तो सभी का यू नो इसमें एक विश्वास था एक ऐसी कोशिश थी कि सब ने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं. एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटीन्यूअस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट. So my sincere thanks to everyone who over the years was there with me in getting and achieving what I finally achieved.
1: जी बहुत खूब बहुत खूब. ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ और ज़िंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं. और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली. एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया या बेटर हाफ शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं हमेशा उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है. आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा कंप्लेन भी नहीं की होगी लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे.
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा. Behind every successful man there is a woman and undoubtedly it has been my wife whose name is Preeti. और जो good part है वो ये है कि हमारे जो दोनों के parents थे वो फौज में coastmates थे जो navy में साथ में आए और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया. और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे एंड माय चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ एंड इन द एंड इट वाज एन अचीवमेंट which I can't thank less to these people. And Preeti is now remains my biggest critique. The kind of lessons that she's given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And main shukrgizar hoon ki mujhe Bhagwan ne achhi bache diye, achhi patni di, maa-baap parents ne jo hausla diya, jiski wajah se main yahan tak pahuncha. और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए.
1: वाह बहुत खूब. और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है. बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने. आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिल तारीफ है. संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं यहाँ

0: पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज आल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है।
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद,
0: जय हिंद।

अभी विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखर वार्ता। रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धाया अंतिमाष्ट चक्रम प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैतिक प्रशिक्षणं चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इन्धन आपूर्ति श्रृङ्खलादिषु

0: सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकेन इत्यमुना सह शिष्टमण्डलस्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती। सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमध्ये अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः। वित्तमन्त्रिणा वैश्विक अनिश्चिततासु अपि भारतस्य वित्तीय अनुशासनस्य प्रतिबद्धता दृढीकृता। वाराणसी संसदीय क्षेत्रे वर्धमान जलौघं विलोक्य प्रधानमन्त्री मोदी मण्डलाधिकारिणं दूरभाषेण आहूय सकलां स्थितिं पपृच्छ। तेन आपद उद्धार कार्याणि त्वरितुम् आदेशो निर्गतः। अन्यत्र उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रिणा योगिना फरुखाबाद मण्डले आप्लाव विभीषिकां समीक्षितुम् आकाशीय यात्रा विहिता। पीड़ित जनेभ्यः च भोजन वैद्यकीय सहायता प्रदानाय निर्देशो दत्तः। केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः अद्य हिमालयीय राज्यानां अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन संभाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबंधन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु 24 होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आयोजनं विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्राणां मुख्य न्यायाधीशाः सहभागिनो भविष्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे रूस, चीन, इजिप्ट, इण्डोनेशिया देशानां न्यायिक नेतृ

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: ಈಗ ಕೇಳಿ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬೇವೂರಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸೋಬಾನೆ ಪದ.

0: की टीम को, तो इस पर वाकई युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और मैं इनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय क्रिकेट की दुखती रग पर उंगली रखी है।
1: मैं जानना चाहूंगी वैशाली कि उन्होंने बात करी कि हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, बट थोड़ा सा कैप्टन्स पर्सपेक्टिव भी हम यहाँ पर लेंगे। हरमनप्रीत कौर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है हमारे और अभी जितनी डिफ़िकल्टीज में टीम खेल रही है, या फिर मैं थोड़ा सा ये कहूँ थोड़ा सा जो कोलैप्स हो रहा है यहाँ पर, कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एज अ कैप्टन, क्योंकि वो आउट भी हो गई वहाँ से, स्मृति मंदना जो है उनका रन आउट हो गया, प्रतिका के रन्स नहीं आए। में भी जब आप डेब्यू करते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो एज अ कैप्टन जब आप इन सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मिडल ऑर्डर में ऊपर आ रहे हो, एक बहुत ज्यादा कंपेटिटिव टीम नहीं है आपके अगेंस्ट, बट एज अ कैप्टन उस समय कोई प्रेशर का रोल रहता है कि जो उन्होंने शॉट मारा और उसके बाद वो आउट हो गई?
2: वैसे कोई, जैसे हमारी हरमनप्रीत कौर खेलती हैं और उन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया कि 200 प्लस स्कोर भी किया है, तो इस टाइम पे उनका वो प्रेशर हैंडलिंग उनको बहुत अच्छे से आता है। एंड अगर ऐसा है कि कहीं किसी के बैट से, अगर बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेयर की भी गलती है, क्योंकि हम कहते हैं देखने में वो टीम गेम है जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जब बैटिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल गेम भी बन जाता है, क्योंकि आपके जगह पर वो 10 जो बाहर बैठे हैं वो बैटिंग नहीं करने आएंगे, आप सिर्फ अपनी बैटिंग करोगे, आपको ही ड्राइव वो सिक्स मारना है वहां खड़े होके। तो ये एक इंडिविजुअल के साथ टीम गेम दोनों साथ में चल रहा है, तो आपको यहां पे एक तो आपको अपनी टीम को भी लेके चलना है, आपको बॉलर्स को भी लेके चलना है, उसके साथ आपका प्रेशर है कि आपके रन भी नहीं बन रहे, ये एक सबसे दुख वाला कारण भी हो सकता है। और वो कहीं ना हमारी फील्डिंग और हमारे एटीट्यूड में, कहीं ना कहीं हमारे फेस पे वो शो भी होता है, और वो हमारे हरमनप्रीत कौर के मेरे को अभी तक वो लगा नहीं, सिर्फ हमारा वो वर्ल्ड कप में लगा था जब हम वो जीते थे, उन्होंने कैच पकड़ा था वहाँ पे, वो खुशी बाद में नज़र आई थी, लेकिन इस ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आज का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना और बताना है कि अपने बैटर्स को कि आप सिर्फ यहाँ पे इस पिच के ऊपर आपको सिर्फ खड़े होना है, पिच पे आपको रन स्कोर करना है, अगर आप बैटिंग पे अगर वहां पे खड़े नहीं होगे तो आप स्कोर कैसे करोगे। और ये बहुत रूट लेवल की बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सभी प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता भी है।
3: फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, जी बताइए, जी कुलदीप जी बताए। जी बिल्कुल, मध्य क्रम की बात कर रहे हैं और हमने इस पर चर्चा भी की है कि भारतीय फुलमाली को स्टेप अप करना पड़ेगा, प्रतिका रावल की तरफ से रन नहीं आ रहे हैं और खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। लेकिन मनोज, थोड़ी चर्चा हांगकांग की भी कर लेनी चाहिए, हांगकांग के लिए जो बैटर नताशा माइल्स हैं और जो बॉलर कैरी चैन हैं, इस साल की बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। नताशा ने इस साल खेली 25 पारियों में 39.28 की औसत से 784 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट की बात करें तो 97.14 का है, इसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन रहा था, जबकि चैन ने 26 मुकाबलों में 4.81 की बेहतरीन इकोनॉमी से 39 विकेट चटकाए हैं और 15 रन देकर 5 विकेट उनका बेहतरीन प्रदर्शन है। और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी हांगकांग की तरफ से?
0: देखिए, मरियम बेबी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं, नाम ही उनका इतना आकर्षक है कि हर कोई देखना चाहता है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगी, गेंदबाजी भी करती हैं। कैरी चैन, अब देखिए आप उनके पास दो दो ऐसे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जिसे आप पुरुषों के क्रिकेट में चाइना मैन क्रिकेट बोलते हैं, उस तरह से उनके पास कैरी चैन भी है, कैचिंग चैन, और ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको खेलने के लिए आपको पूरी तैयारी करने की ज़रूरत होती है, और आप जब तक अभ्यस्त नहीं होते, क्योंकि उनकी गेंद कौन सी ऑफ से टिप्पा बढ़कर अचानक अंदर आ जाए, आपको उसका पूर्वानुमान लगाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, समय बहुत कम मिलता है। इनके स्पिनर्स में मैंने एक और चीज़ देखी है कि कईयों के पास गति बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल समय नहीं देती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2017 में जिस तरह से इन्होंने ईस्ट एशिया कप जीता, और उसके अलावा 2024 में भी इन्होंने, इनकी एक प्लेयर थी मारिको हिल, जिन्होंने सेंचुरी बनाने वाली वो पहली खिलाड़ी साबित हुई थी, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इस टीम को अगर एक्सपोजर मिलता है, लगातार मौके मिलते हैं।

0: तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराएंगी आने वाले वर्षों में।
1: 108 मुकाबले खेले हैं हांगकांग ने, 65 में जीत, 40 में हार, 2 टाई और 1 में परिणाम नहीं आया है, और 222 रन पर 1 विकेट इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है मालदीव के साथ। 11 फरवरी 2024 को ये प्रदर्शन आया था।
2: वैशाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मारिना लैम्पलो जो है, जो इनकी ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं आज थोड़ा टफ कंपटीशन देंगी शफाली और स्मृति मानधना को, क्योंकि एशिया कप के ही पिछले मुकाबले में 4 विकेट चटका चुकी हैं, 22 रन इन्होंने मारे थे, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। तो आपको लगता है कि आज जो हमारा ओपनिंग पेयर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये लेके आने वाली है?
3: मारिना के साथ साथ मुझे लगता है कि कैरी चैन भी लेके आएंगे, क्योंकि वो रिस्ट बॉलर हैं और हमारे इंडियन टीम में रिस्ट बॉलर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। और रिस्ट बॉलर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो जब एयर में बॉल जाती है ना, तो जब वो टप्पा खाती है तो बहुत जल्दी अपनी दिशा बदल देती है। और इस तरीके के जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बैटिंग और जो स्पिनर्स पे वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला आज का। एंड उसके साथ साथ मरियम की अगर बात करें तो वो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है मिडल ऑर्डर पे, जो हम लैक कर रहे हैं इंडियन टीम के, हमारी जो इंडियन टीम है वो लैक कर रही है। वहीं हांगकांग की टीम में मरीना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ हमारे पास एक और रुचि था, बहुत अच्छी स्पिनर है, लेग ऑफ स्पिन ब्रेक करती है, और इन ये सबसे मेन है, कैरी और मरीना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं इंडियन टीम के बैटर के लिए, और उन पे खास तरीके से उनको देख के, बॉल देख के खेलने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उनको अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना बहुत जरूरी है। आज के सबसे मेन है प्रतिका रावल एंड स्मृति मंदना, जो स्पिनर पे ही लास्ट टाइम आउट हुए थे, और हमारी हरमनप्रीत कौर भी हुई थी।
1: मनोज, इनमें से बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स होंगी हांगकांग की जिन्होंने भारतीय स्टार्स खिलाड़ियों को देखकर क्रिकेट की तरफ अपना मन बनाया होगा, चाहे हरमन को देखा होगा, स्मृति को, शेफाली को, इनके सामने खेलना एक तो उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं दबाव में भी आते हैं कि इतने बड़े स्टार्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, दुनिया भर की लीग में खेलते हैं, इस क्या कुछ चल रहा होगा हांगकांग के खिलाड़ियों के मन में?
0: देखिए, जिनके साथ आप तस्वीर खिंचवाने में अपने आप को आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए वो अद्भुत लम्हे होते हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिले तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना। तो बस कुल मिलाकर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खासकर जो विमेन स्पिनर्स हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। आपने ओपनर्स का जिक्र किया, बस मैं कहूँगा कांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, उनको मैं देखना चाहूँगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने थे ये दोनों खिलाड़ी, खासकर इंग्लैंड के टूर पर जहाँ कंडीशंस हमारे फेवरेबल थी और ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जितना इनमें मादा था।
1: जी हाँ, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है, और आज चाहेगी भारतीय टीम की एक बेहतरीन प्रदर्शन करें, खास करके एक बढ़िया टोटल बनाएं। वक्त हो चला है फर्स्ट बॉल 20 के समापन का। वैशाली जी आपका, मनोज जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
4: फर्स्ट बॉल 20।
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
6: महिलाओं का एशिया कप 2026 गतिमान है, और आज की शाम एक तरफ भारतीय खेमा जो थाईलैंड के विरुद्ध झुका नहीं है, और वैसे भी एशिया कप के इतिहास में देखें तो ये खेमा ज्यादा रुका नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो अभी पनप रही है, जो बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है, व्याकुल है, तत्पर है, हांगकांग का ये खेमा एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार है। मजे की बात ये कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जाने वाला ये मुकाबला जो दो टीमों के मध्य है उनके बीच में तुलनात्मक तौर पे एक ही दृष्टिकोण रहेगा, वो ये कि दोनों का आमना सामना पिछली बार थाईलैंड के विरुद्ध हुआ था, जहां भारतीय खेमे ने थाईलैंड के विरुद्ध एक कमाल की शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ी जीत, 94 रन की जीत हासिल की थी, तो वहीं हांगकांग का खेमा थाईलैंड से बहुत करीबी मार्जिन से, सिर्फ 6 रनों के आंकड़े से शिकस्त का सामना कर कर आया। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का, तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, इस कड़े मुकाबले के लिए। बता दें आपको कि ये 10वां संस्करण है एशिया कप का, और महिलाओं के इस एशिया कप में भारतीय टीम ने 7 दफे चैंपियन बनने का दारमदार अपने नाम किया, तो वहीं एक दफे श्रीलंका, एक दफे बांग्लादेश ने ये गर्वांगित करने वाला अवसर जिया।

0: है और उस लम्हे को, उस पल को अपने दृष्टि से देखा भी है। आज इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम सबसे पहले आपका तारुक कराते हैं हमारी टीम के साथ। हमारे साथ शमा सनी रहेगी जो स्कोरर की भूमिका में है, हमारे स्टैटिस्टिशियन के तौर पे मनोज कुमार। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हिंदी में आपको सुनाने के लिए मैं आयुष शर्मा, और अंग्रेजी में कहानी को बयां करने के लिए मेरे मित्र, मेरे गुरु भाई, और आज अपने पदार्पण के लिए तैयार स्वागत रोहित गांगुली।
1: Thank you so much, Ayush. And of course, it's a great match that's going to happen definitely for India. It's going to be a challenge that will be worth noting because obviously the talk of the town is that despite a convincing victory against Thailand, what happened in the middle order? And of course, at the other end for Hong Kong as well, it's a tough challenge. They came close against Thailand, but at the same time, they'll be hoping to finally cross the line and create a massive upset. But then, keeping aside the story of ifs and buts, we'll move straight to the game.
0: Chaliye, to aapko bata dein कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उसका कारण ये कि हांगकांग के खेमे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इकरा सहार गेंदबाजी की शुरुआत करेगी। 82 मुकाबले कुल मिला के खेले हैं, 53 विकेट उनके नाम है सर्वाधिक। यदि आप इनका सुनना चाहें तो हम आपको बता दें कि 4 विकेट चटके थे महज 4 रनों को खर्च करते हुए। इससे पता चलता है कि कितनी बेहतरीन ये गेंदबाज है, लेकिन उम्मीदों का पहाड़ आज भारतीय खेमे पे होगा। पिछले मुकाबले की जो बड़ी जीत प्राप्त की थी थाईलैंड के विरुद्ध, क्या उसी तरीके का सफ़र यहाँ जारी होगा? एक और चीज़ जो देखने लायक है हमारे लिए, सुनने लायक हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर आज कार्य करेगा। बहरहाल शुरुआत भारतीय ओपनर्स के साथ रहने वाली है। भारत की एक तरफ स्मृति, जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते रहते हैं, शेफाली वर्मा का पिछले मुकाबले में जो अर्शद के पारी को खेलना था उसने सभी को प्रभावित किया था। उसी बीच इकरा पहली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। लो फुल टॉस के साथ गेंदबाजी की शुरुआत, बहुत ज़्यादा गति नहीं थी, पैड्स की तरफ गेंद थी जिसे सीधे बल्ले से खेल दिया गया था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे मुकाबला खेला जा रहा है और स्मृति मंधाना ने पहली गेंद को बहुत सम्मान दिया है और अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी आज करनी पड़ेगी। जो ट्रैक है, जो पिच है, उसमें समांतल घास हमें यहाँ पर नज़र आती है। भारतीय टीम के स्पिनर्स की वैसे ही हमेशा तारीफ रहती है, चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ इस पिच को देख के ऐसा लग रहा है कि तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद है। दूसरी गेंद ड्राइव कर दिया गया है कवर्स की तरफ, दो फील्डर्स को भेजती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या फील्डर जीतेंगे? बिल्कुल जीते हैं। आखिरी क्षणों पर जब कम से कम 2 या 3 फीट का फासला बचा था गेंद और बाउंड्री के बीच, एक अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और कवर्स की दिशा में एक अच्छी फील्डिंग के चलते यहाँ 2 रन बचाए गए हैं। रोहित, शुरुआत में आपको चाहिए ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स, और बीबी जो पिछले मुकाबले में कप्तानी कर रही थी उन्होंने ये फील्डिंग एफर्ट दिखाए हैं।
1: एब्सोल्युटली, आई थिंक मरियम बीबी कम्स इन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई यू वुड एक्सपेक्ट सच स्पेक्टेकल्स फ्रॉम हर।
0: पहले ओवर की तीसरी गेंद, स्मृति ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, बाएं हाथ की बल्लेबाज है। फील्डिंग आपको बता दें, एक खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे मौजूद। अगली गेंद सीधी जड़ों में, एक यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल करा, गेंद को बेहद नीचे रखा, ज़्यादा गति दी नहीं बल्लेबाज को, ना ही कदमों का इस्तेमाल करने का अवसर दिया। और इकरा की यही बात है, यही काबिलियत है, पिछले कुछ मुकाबलों में भी हमने देखा है लेंथ का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती हैं। पिछली गेंद देख ली थी, गुड लेंथ डिलीवरी थी जिसे ड्राइव करने में कामयाब थी स्मृति, तो इस बार गेंद को थोड़ा और फुल किया, यॉर्कर का प्रयास किया। शुरुआती 3 गेंदें, भारत का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के है। इकरा ने शुरुआत एक डॉट गेंद के साथ की थी और यहाँ फील्डिंग में परिवर्तन देखने को नजर आया है, एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग पे बुला लिया गया है। ओवर की ये 4th गेंद, एक और गुड लेंथ डिलीवरी जिसे ड्राइव कर दिया पॉइंट की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। संभवतः शुरुआत में इस प्रकार की झटपटाहट, इस प्रकार की घबराहट इस युवा टीम में होगी। हांगकांग के इस खेमे ने आपको बता दें कि तुलनात्मक तौर पर उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं किया है, और हालांकि भारत एशिया कप को 7 बार जीत चुका है तो तजुर्बे की भारत के पास।
2: मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
3: साहब, पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया तो साहब,
2: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया।
3: सच्ची बोलता हूँ साहब, बाप कसम पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
2: बाप की झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?
3: रतन।
2: बाप का नाम?
3: जी रामचरण दास।
2: रहता किधर है?
3: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर।
2: वो मजदूर बस्ती में?
3: हाँ साहब,
2: मजदूर बस्ती में। क्या नाम बताया बाप का?
3: जी रामचरण दास।
2: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है?
3: हाँ साहब, 2 साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था साहब।
2: मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं, भगत जी?
3: हाँ साहब, कोई कोई भगत जी भी बोलते हो?
2: कोई कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा, चल मेरे साथ।
3: किधर को साहब?
2: अबे चल।

0: आप बहुत अच्छे हैं साहब।
1: अच्छा अच्छा कुछ नहीं बे, ये सब इसलिए कर रहा हूं कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूं। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पायजामा पहन ले, चाय पिएगा?
0: जाने दो साहब।
1: हाँ हाँ जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का
0: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था,
1: था मतलब?
0: वो भाग गया साहब। जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
1: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
0: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
1: शादी हो गई उसकी?
0: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
1: वाह वाह वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के ही भाग में बदे थे। आजकल बहन कहाँ है?
0: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
1: तीसरा नंबर तेरा है
0: जी
1: और तेरे बाद?
0: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहनें हैं।
1: भाई क्या करता है?
0: कुछ नहीं साहब।
1: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठकर खाते हो। तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
0: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में। हाँ
1: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का।
0: साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया।
1: भगत जी ने?
0: हाँ साहब।
1: वाह वाह वाह क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती हैं उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी हैं सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो हैं जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए। अब सिर झुका कर क्या बैठा है? उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे। उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने, सिवाय इस तस्वीर को माला पहनने के।
2: Time Shruti cuts it away, and there is a fielder who will be keeping it down. The sweeper cover comes into play and keeps it down to that solitary run. Carrie Chan will be pretty happy keeping the ball. Of course, the idea is clear so far. Most of the ball that she's done, she's taken it away from Shruti Mandana. The idea is to try and make her stretch and play the ball, make Shruti lose her balance, because once you start bowling close enough to Shruti's batting range of motion, she's going to come after you. She's got an excellent reach, she's got an excellent range, and that is why it's very important that you try and take the ball away from her. Round the wicket, however, for Shafali Verma. This time bowls it shorter. Shafali does cut it away, however, finds the point fielder for another dot ball. Carrie Chan will be pretty happy after conceding a boundary in the very first ball of the over, the first legal ball of the over, basically. I think after that, she's just gone for 7 runs, and that includes a couple of wides as well. Last ball of the over, dances down the track, goes inside out, over extra cover, and that is exactly how Shafali Verma plays. She gets a first boundary. And with this, we come to the end of the second over. 16 for none right now. India looks like they, both of them, Shafali and Shruti, are going to command or at least have a commanding start to this innings.
3: वो कहते हैं कि पहाड़ों के बीच जाके यदि आप ध्वनि करेंगे तो आपको उसकी प्रतिध्वनि अवश्य सुनाई देगी, क्योंकि पहाड़ किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते। और वैसा ही खेल शेफाली वर्मा का है। पहली गेंद सिर्फ एक डॉट ली, सिंगल लिया और अपने आप को थोड़ा सा हौसला दिया। उसके बाद जैसे ही सामने स्पिनर आई, इनसाइड आउट का एक बेहतरीन शॉट, अपने तर्कश से निकाला एक ऐसा तीर जिसने जाहिर तौर पर गेंदबाजों के दिलों में और साथ ही साथ पूरे हांगकांग के खेमे में घाव किए होंगे गंभीर। भारत एक अच्छी शुरुआत के साथ आ चुका है। स्मृति ने 9 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, शेफाली ने 3 गेंदों में 5 रन बना लिए हैं। कृतिका अगली आने वाली बल्लेबाज है, उसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी। इकरा जिन्होंने पहला ओवर किया था वो इस पारी का 3रा ओवर लेकर आई है। विकेट कीपर को

0: आगे बुलाया गया है। एक फुल टॉस गेंद ऑफ साइड के बाहर थी जिसे कट करने की कोशिश में गेंद को पॉइंट की दिशा में एक टप्पे के साथ खेल दिया। कोई रन आएगा नहीं तो दूसरे छोर पे शैफाली वर्मा मुस्कुराहट के साथ नजर आई थी। पिछली गेंद जब सैफाली ने खेली थी पिछला ओवर गतिमान था, पहचान लिया कि गेंद में गति इतनी नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया इनसाइड आउट कवर्स की दिशा के ऊपर से, कुछ टप्पों के बाद गेंद बाउंड्री रोप्स के पार चली गई। यकीन मानिए एक ऐसी खिलाड़ी जो हमेशा आपके लिए रन बनाए तो उससे ज़्यादा हौसला टीम को नहीं चाहिए। अराउंड द विकेट अगली गेंद एक और फुल टॉस गेंद, ना जाने क्या हुआ है लेकिन गेंद शायद टप्पा खाने का नाम नहीं ले रही। दूसरी बात यह है कि गति भी इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही है इकरा की गेंदबाजी में। 30 रन अगर और बनाती है शैफाली वर्मा तो रिकॉर्ड उनके नाम होगा, तीसरी बल्लेबाज बनेगी वो 3000 से ऊपर रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओवर की तीसरी गेंद, तीसरा ओवर गतिमान है, तीसरी गेंद स्ट्राइक पे आ चुकी है सैफाली वर्मा, 3 गेंदों में 5 रन उनके बल्ले से आए। भारत का स्कोर 17 बिना नुकसान और छोर में परिवर्तन करते हुए अब अराउंड द विकेट आई गेंद, टप्पा तो खाई लेकिन उछलने का नाम नहीं था, धरातल की बिल्कुल परत पे छूती हुई सी ऐसा लगा कि गेंद जा रही हो। विकेट कीपर के दस्तानों पे गेंद जब गई उससे पहले भी 2 टप्पे खा चुकी थी। इससे साफ पता चल रहा है कि पिच से तेज गेंदबाजों को अभी तो वो मदद नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद और अपेक्षा थी। हल्की सी हरकत थी विद द सीम जैसे कि कहा जाता है, गेंद थोड़ी सी घूमी और बहुत ही नीचे विकेट कीपर ने उसे जाके अपने दस्तानों में पकड़ा। ओवर की चौथी गेंद, हांगकांग की टीम का ये फैसला कि वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, कितना सही कितना गलत ये संभवतः अभी पावर प्ले की परिस्थिति में बताना थोड़ा सा मुश्किल। एक मिसफील्ड हुई है और उस वजह से सर्कल के भीतर ऑफ साइड में एक सिंगल भारतीय खेमे को दोबारा मिल गया है। स्मृति स्ट्राइक पर आ चुकी हैं, 10 रन माफ़ कीजिए उन्होंने बनाए हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए। भारत 18 पे पहुंच चुका है और इस ओवर में यानी कि तीसरे ओवर में 2 और गेंदें शेष। शुरुआत इकरा ने की थी डॉट के साथ, फिर 2 सिंगल आए थे उसके बीच एक डॉट भी थी और भारत को जो 2 रनों का इजाफा हुआ है इस ओवर में उसमें क्या और तब्दीली करनी पड़ेगी। पैड्स पे की थी गेंद, उसे कलाइयों का इस्तेमाल करके 30 यार्ड के घेरे के भीतर ही रखा है, कोई रन नहीं मिलेगा। ये डॉट इस प्रकार का दबाव बनाती है जो संभवतः कोई भी बल्लेबाज चाहता नहीं होगा। अभी शुरुआती लम्हे हैं, पावर प्ले गतिमान है और ऐसी परिस्थिति में जितनी ज़्यादा डॉट होगी भारतीय टीम के लिए परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं। संध्याकाल का समय, फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, अराउंड द विकेट एक और फुल टॉस, ड्राइव कर दिया गया है, कवर्स मौजूद है, डीप कवर पे एक खिलाड़ी जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ से थोड़े से लेट नज़र आए थे। बहरहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अच्छी चीज़ यही है कि अब तक भारत ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है।
1: I think India is well aware of the fact that Shruti Mandhana and Shafali Verma, both of them will have to play a long, long innings because these two, they can very well be the spine of the Indian batting unit. We are aware of the fact that if Shruti Mandhana keeps on going, she's got what it takes to build this Indian innings. And at the other end, Shafali Verma, she needs a little bit of time, a little bit of mileage to just get going. Once she gets going, once she gets that backlift into play, we've all seen the kind of explosive batting that Shafali Verma is capable of. Right now in the points table, India right at the top, 1 match, 1 win. The net run rate of 4.70, that's like a massive leap. Of course, Pakistan had a bit of a scare going on into that game, but they eventually managed to win this game as well. Marina Lamplough, she's the one who's going to come back into the coming into the attack, in fact. 45 matches, 16 wickets. Best of 4 for 11, economy of 5.47. Can be one of those bowlers. We'll be going round the wicket to Shruti Mandhana, and that completely beat Shruti Mandhana. Wonderfully collected by Daswani behind the stumps. There was a fairly straighter delivery. Not much pace on the ball, into the surface basically. And Shruti Mandhana once again beaten by the lack of bounce on that ball. She was expecting the ball to go slightly higher, but it didn't really go in. And her best figures, Marina Lamplough, she registered that in the last game. 4 for 11 against Thailand. And that's indeed why Hong Kong, they played an excellent game. And Hong Kong in their recent times, it's not that they have got too many victories going their way. It looks like there's a bit of a challenge right now. And the two umpires will have a little chat between themselves. And whatsoever the problem was has been sorted. Definitely for Hong Kong, they have beaten Tanzania in recent times. The last couple of matches that they won, it came against Tanzania. And of course, Natasha Miles was absolutely instrumental in both those games. And that is why coming back to the side against a side like India, that's going to be a massive boost for Hong Kong as well, especially considering their batting has been in ruins. Shruti Mandhana goes aerial.
2: over mid-wicket, and that will run away to the boundary. Once again, getting that lock sweep into play, gets that aerial factor, and that's the 112th boundary.
3: एकाकीपन के साथ ही
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे
4: तेरा जवाब नहीं
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग
4: प्यार का राग सुनो रे
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से
4: सदा रही है सदा रहेगी
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोलते ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं अमर आरशी, बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमर आरशी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी, गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलीन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
6: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
6: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
6: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है,

0: समिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में। समीर के बोल थे हिमेश रेशमिया का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
2: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
2: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
3: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा

0: सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव स्टीवी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे।

0: इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

आपके लिए कार्यक्रम में आपने अभी सुना नया रास्ता फिल्म का ये गाना, जिसे आशा भोसले ने गाया था, साहिल लुधियानवी ने लिखा था और एन दत्ता ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं, धुन शंकर जयकिशन की।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। आपके लिए कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं लीडर फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। शकील बदायनी की ये रचना है नौशाद की तर्ज।

घराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायनी के बोलते रवि का संगीत था। नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर के आवाजों में। लीजिए।

0: लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये गीत अभी आपने सुना।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
5: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
5: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: इतना हुस्न पे हुस्न।

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश के आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे खयाम। लीजिए अब सुनिए ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है।

यार हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

0: व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
1: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ. जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಎಫ್ಎಂ ಕಂಪನಾಂಕ 101.8 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಟುಡೇ ಸಮಯ 11:05. ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त